0: Welcome back. Thanks for staying with us. You're watching Beyond Pulse with me, Diksha Bisla. We have lots lined up for you on this bulletin.
1: पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है।
0: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस्ड अ रैली इन हैदराबाद, कॉशन्ड सिटिजन्स ऑन द इंपैक्ट ऑफ ईरान वॉर। द प्राइम मिनिस्टर अर्जेस फॉर कलेक्टिव पार्टिसिपेशन टू हेल्प इंडिया फेस ग्लोबल इकोनॉमिक। Supply chain challenges, including restricting fuel consumption and halt purchasing coal.